धाम साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इजी मेरो टिया गिसँग लाइफ छ सुपन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun.

0: भोटे कोशी बाढ़ी क्षतिग्रस्त जल विद्युत आयोजना को सुरूंग दुईजना को दस दिन पछि जीवित उद्धार दुबई को काठमाडौं सैनिक अस्पताल में उपचार गरिदै अमेरिकी मध्य अवधि निर्वाचन में स्पेस एक्स संस्थापक मस्क को सहयोग रिपब्लिकन उम्मीदवार का पछिल्ला केही दिन में मात्र 8 लाख डलर भन्दा बढी खर्च नेपाल भलिबल लीग को पहिलो संस्करण आजदेखि शुरू हुँदै उद्घाटन खेल में सगरमाथा र मधेस वारियर्स भेट्दै
1: दैनिक रू 197 मा रूपचास लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

जाम साथी धुमधाम राइट फर फन नया इजी मेरो टियागो इजी सँग लाइट छ सुपर फन एल्डर्स लव इट सो डू द यंग इट्स सेफ

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।